0: वेलकम बैक टू रेडियो केजे लोकल. यू लिसनिंग टू अस ऑन प्लेन्स मीडिया 96.9. आज रेडियो में काफी ज्यादा हलचल मचा हुआ है एंड एज यू सी हम एक अलग स्टूडियो से आज बात कर रहे हैं. जितने लोग फ्रीक्वेंसी पे है शायद आप नहीं देख पाओगे, पर फेसबुक लाइव वाले अच्छा एक छोटा सा रूम एंजॉय कर रहे हैं आज.
1: जी हाँ बिल्कुल, एक और फ्राइडे आप सभी का हम स्वागत करना चाहते हैं. और आज हम खास तौर पर से आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि जन्माष्टमी, यस जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन सभी जगह पे हो रहा है, तो हमारी तरफ से रेडियो केजे की तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी. खास तौर पर से जो एक्चुअली पेमनेंट और मोस्ट लव्ड रेडियो ऑफ क्राइस्टचर्च में प्रिजन नीरज जी, आप अपने दोस्तों के साथ हमें आज अभी फिलहाल के लिए सुन रहे हैं. आपको और आपके सभी दोस्तों को हैप्पी जन्माष्टमी. पर चले ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ स्टूडियोज में जन्माष्टमी के बारे में और बात करने के लिए वी हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल लवली टीम. और जब इस टीम के बारे में हम बात करते हैं, जो लोग हमें फ्रिक्वेंसी पे सुन रहे शायद आप हमें इनके बारे में अभी देख रहे हैं, वेल आप सोच रहे होंगे कि कौन है स्टूडियोज में, बहुत ही जल्द इनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं. पर अगर ये खूबसूरत चेहरों को आपको देखना है तो आपको जाना है रेडियो केजे के फेसबुक लाइव पर. मीना जी स्वागत है. राधे राधे, कैसे हैं?
2: राधे, बहुत बढ़िया.
1: हमेशा की तरह आप चमक रहे हैं, हमेशा की तरह आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. आज एक खास कारण से आप यहाँ पर आए हैं, क्या कारण है?
2: आज हम जन्माष्टमी के सबसे पहले तो ये सोचिए कि हम आपको बधाई देने के लिए आए, और पूरे क्राइस्टचर्च को भी बहुत बहुत बधाई. और हम राधा कृष्ण भजन मंडल से हैं, और हमारा जो मंडल है वो कल नंद उत्सव कर रहा है.
1: वाओ.
2: हाँ, तो हमारे नंद उत्सव में हम सब आपको इन्वाइट

0: करने के लिए बच्चे बूढ़े सब लोग आइए और सब लोग एंजॉय कीजिए कृष्ण नटखट की क्री लीलाएं एंजॉय करो और बधाई दो और बधाई लो
1: क्या बात है नंद उत्सव तो कृष्णा जी से हम सीधा कृष्णा जी के पापा पे पहुंच गए नंद जी को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं नंद उत्सव में कृष्णा जी और नंद जी को भी सेलिब्रेट करेंगे दोनों को
0: नंद जी को नंद जी तो हमने भी बनाए नहीं है लेकिन हमने यशोदा मैया रेडी रखी है आपके लिए
1: क्या बात है चले बाकी जो टीम मेंबर्स इनसे भी बात करते हैं आपसे हमारी मुलाकात वापस हो रही है और पिछले वीक आपने हमें एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था किसी ने हमसे कहा कि क्रिश आप हमें स्टूडियो कब बुलाओगे और हमने कहा आपका स्टूडियो है एंड देन आपने बहुत ही प्यारे तरीके से बोला कि आप भूल जाते हो कि आप लोग किससे बात कर रहे हैं सो थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट जिसके पास जवाब रेडी रहता है चलो आज दूसरी बार आपसे मुलाकात हो रही है विद इन अ वीक हाउ आर यू एंड वेलकम टू आवर स्टूडियोस
2: ऑल गुड थैंक यू वेरी मच इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग टू बी हियर इन योर स्टूडियो एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर सबसे पहले सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो आर के बी एम की तरफ से हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बधाई हो और आज हम आपको सबको इनवाइट करने आए हैं कल की नंदोत्सव जो हम मना रहे हैं उसके लिए आप सब लोग आएँ अपनी फैमिलीज को लेके आएँ अपनी फ्रेंड्स को लेके आएँ आप आज मेरी आवाज़ पे मत जाएँ थोड़ा सा मेरी आवाज़ को इग्नोर करें और हमारे इनवाइट को एक्सेप्ट करें प्लीज़ तो कल आप हम आप सबको मिलना चाहेंगे आप सब कल आइए और धूमधाम से आइए हम बहुत मज़े से नंदोत्सव मनाएंगे एंड मीना आंटी तो ऑलवेज इंजॉयमेंट का भंडार है
1: मीना जी हमेशा फोन में रहती
0: है के लिए 8 दिन से तैयारी चल रही है तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो जिन्होंने हमको आज बुलाया इनकी तैयारी देख लो यही समझ लो कि ये लोग भी 8 दिन से ही तैयारी कर रहे होंगे लड्डू बनाओ खिलाओ सब सारी तैयारी करो गिफ्ट खरीदो गिफ्ट देना है बच्चों को देना है बड़ों को देना है तो ये बातों में बहुत मजा आती है कि जब हम सोचते कि हम किसी को कुछ देना है तो हमारे मन में इतना प्रेम आता कि उनके लिए हम क्या ऐसा लेके जिनको वो बहुत अच्छा लगेगा तो ये भी मेन एमिंग होता है कि हमको भगवान के ये जो लीला है इससे ये पता चलता है कि हमारे मन में एक वृत्ति आती है कि आपके पास कुछ है तो आप थोड़ा थोड़ा बांटो जैसे नंद बाबा और यशोदा ने बांटा है बहुत सारा लुटाया गैया मैया बछिया कुछ नहीं बची उनके पास इतना उन्होंने लुटाया लेकिन कोई भी घर नहीं लेके गया सब लोगों ने वही के वही लुटाया है इसको लुटाया उसको लुटाया और सारे लोग बहुत खुश हुए हैं तो उस तरह से वही आनंद हम कल क्राइस्टचर्च में देना चाहते हैं नंदगांव बनेगा और हमारी यशोदा आएगी कन्हैया आएंगे और हमारी सारी टीम मौजूद है इन टीम के कोऑपरेशन की वजह से इतना काम हुआ है और हमारी आरकेबीएम की सारी सखियों ने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया है आपके लिए तो आप सब वो प्रसाद को लूटने के लिए आइए
1: धन्यवाद कुछ लोग हमारे साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से भी जुड़े हैं सरस्वती जी हैप्पी जन्माष्टमी आपको निस मार्टिन जी हेलो हैप्पी जन्माष्टमी सीताराम और उदय पटेल जी आपको भी हैप्पी जन्माष्टमी और अनुराग जी हमारे स्टूडियो के अंदर से ही सुन रहे हैं बाहर से बहुत ही जल्द आवाज की दुनिया के जो बड़े मालिक हैं इनसे भी मुलाकात होगी चले आगे बढ़ते हैं अमित जी कैसे अमित जी आप माय मराठी के खूबसूरत गुड लुकिंग मैन वेलकम टू रेडियो केजे
3: थैंक यू नाइस टू बी एट ऑन रेडियो केजे लोकल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम फर्स्टली
1: बिल्कुल आपके लिए तो एनीथिंग
3: थैंक यू
1: आपने तो रेडियो केजे को घर ही बना लिया है हर दूसरे भी कब हमारे साथ आते हो बट वी लव यू दैट्स व्हाई
3: वी लव बोथ ऑफ यू नाउ 3:30 PM टुमारो एट द श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर इन वाइनोनी प्लीज़ आइए सभी लोग आइए जैसे मीना ताई ने बोला हमने सब हमारी सारी टीम ने बहुत काम किया है मैं ये बोलना चाहता था कि जो प्रिपरेशन हुई है इसके जो लोगों ने काम किया है जो मेहनत की है यू विल सी टुमारो मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ जैसे मीना ताई ने बोला है बट वहाँ पर आपको पता है क्रिश जी हम कल वहाँ पे ड्रामा भी करने वाले हैं
1: ड्रामा तो मुझे हर दिन अपने घर पे देखने को
3: जीबी जी
1: क्या बोला पर अभी हमने जीबी जी ने आपने
0: ड्रामा के हीरो मौजूद हैं
1: अरे हीरो ड्रामा की हीरोइन हमारे बाजू में ही पर आई थिंक जब हमीद जी ने कहा है और जीबी जी ने हमको वो अपनी प्यारी खूबसूरत नजरों से कहा है कि क्रिश जी वैसे तो हमारा कल एक इवेंट है ये इवेंट है लगभग पर विल बी देयर
4: बट हमें ऐसे आप लोग जब बात कर रहे हैं हमने कृषि को इशारों से कहा कि हम चलेंगे क्या उसके
3: और परफॉर्मेंस भी है ड्रामा भी है और परफॉर्मेंस भी है डांस परफॉर्मेंस
0: एक अलग नेचर मिलेगा

0: को आपने जो देखा होगा ना यहाँ से जरा सा डिफरेंट मिलेगा
1: बिल्कुल वी वी एक्साइटेड
0: प्रसन्न होंगे उन लीलाओं से
1: जी हाँ और चले हमारे साथ जब रेडियो केजे रामायण लेकर आ रहे थे और इधर क्राइस्टचर्च में हम पुकार रहे थे लोगों को जो दान दाता है कि आ जाइए क्योंकि दो लोग कितना करें और ऐसे ही दान दातों में से ब्लॉसम डेंटल की प्रिया जी जिसने क्राइस्टचर्च में नहीं बल्कि न्यूजीलैंड में काफी लोगों का उनका जो खूबसूरत स्माइल है वापस दिया है और आज प्रिया जी आपका वापस हमारे स्टूडियोज में आए सबसे पहले तो हाथ जोड़कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम और बताइए इस मंडली के साथ आप क्या योगदान करने वाली है
2: थैंक यू सो मच क्रिश जी आपका इतना ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन के लिए वैसे तो मुझे कहना चाहिए कि हम बहुत लकी हैं कि हमें आप जैसे लोगों का साथ मिला मीना जी ने जिन्होंने RKBM की फाउंडेशन करी हम तो बस पपेट्स हैं कहते हैं ना हम जो भगवान जी हैं वो बस किसी रूप में किसी ना किसी को भेजते हैं तो हम लोग एक धागे हम वही है ना एक माला के छोटे छोटे मोती हैं जो मिलके हम एक माला बनाते हैं तो सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू कि ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और ये जो बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है कल क्योंकि जन्माष्टमी तो पूरे कहते ना कृष्ण लीला तो जितनी मिले उतनी कम है तो हमारे जो इनकी फाउंडेशन है थैंक्स टू मीना जी जिन्होंने हम सबको बांध के रखा है और ताकि हम इतनी बिजी लाइफ में भी हम भक्ति से जुड़ सकें तो जितनी कोशिश होती है हम कोशिश करते हैं कि हम जितना भी हम जो हमारे पास है हम दूसरों को बांट सकें यही मेरा क्लिनिक डेंटल प्रैक्टिस का भी यही फिलॉसफी है कि मैं जो है मैं जितना हम किसी को दे सकें उतना अच्छा है और यही फिलॉसफी मैं मीना जी के साथ और जितने भी लोगों के साथ मैं जुड़ती हूँ और आप लोगों का भी सेम है आप लोगों की वजह से कितना क्राइस्टचर्च जुड़ता है तो थैंक्स टू क्रिश एंड जीबी हैट्स ऑफ टू यू बोथ आप कितने लोगों को कितने लोगों को साथ लेके चल रहे हैं।
1: आपने सही कहा कि हम भगवान कृष्णा के आसीन कृपा से बहुत लकी है ना क्योंकि हमारे पास दो जीबी जी का खूबसूरत चेहरा और हमारा खूबसूरत स्माइल दोनों जब साथ मजाक में क्या बोल
2: रहे
1: पर ये जो है राधा कृष्ण भजन मंडली और कल ये सैटरडे को हो रहा है शाम को 3:15 से 7:15 तक और ये हो रहा है 53 वैंकूवर क्रिसेंट वाइनोनी चलिए आप जैसे हमने आपसे कहा था कि आज समय थोड़ा कम है हमारे पास तो मीना जी वापस आपके पास आते हैं एक प्यारा सा इनवाइट हो जाए क्योंकि कल दही हांडी भी होने वाला है मुझे दही बहुत पसंद है इसीलिए भगवान इसीलिए मेरे माता पिता ने मेरा नाम कृष्णा रखा है
0: हम लोग उसके पहले हमारा जितना जो हम लोग ज्यादातर ट्रेडिशनल कीर्तन करते हैं और ट्रेडिशनल कीर्तन में जो बजाया जाता है जो गाया जाता है आज के लोगों को इतना मेरे ख्याल से हम लोग नहीं रहेंगे तो ये कोई नहीं सीख पाएगा यही मेरी इच्छा थी कि मैं ये जो नया ग्रुप है ये लोग थोड़ा थोड़ा सीख लें कि जब कृष्ण का जन्म होता है तब क्या गाया जाता है ऐसा नहीं कि जो अभी वो यूट्यूब वालों ने तो पूरे वाट लगा के रखी है तो जो हमारे ट्रेडिशनल जो गाए जाते हैं
1: ये सब सुनने को मिलेगा कल बिल्कुल सरप्राइज हम निकालेंगे नहीं वरना लोग आएंगे नहीं अगर आज सुन ले
2: तो कल की तो कल की रखनी है
1: कल की रखनी
2: और बच्चों के लिए बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा जितने बच्चे जुड़ सके और कृषि आपका नाम तो कृष्णा से जुड़ा है
1: अभी जी बीजू को आज हम बोल रहे थे ऐसे मजाक मजाक में बोल रहे हाँ जी। क्योंकि हमारे मजाक करने की बहुत बुरी आदत है मैंने कहा जी को बोला कि मेरे माम जब मैं पैदा हुआ था तो हाँ। 2 महीने बाद जब नाम रखा है तो उन्होंने कहा मंदिर में कि ये कृष्णा की तरह दिख रहा है इसका रंग रूप कृष्णा की तरह है अच्छा। तो उसका नाम कृष्णा रखना तो ठीक है कृष्णा रख गया तो फिर जब बड़ा हुआ तो देखा कि सचमुच ही कृष्णा काला कृष्णा काला क्यों रात पर एक बार फिर समझ में हर जगह जब भी हम प्लेस जाते थे गोरा कृष्णा कब से आ गया मैंने कहा गोरा कृष्णा कब से पैदा हो गया
2: और कृष्ण के लिए राधा भी मिल गई जी भी आपकी राधा है ये तो बिल्कुल कृष्ण राधा का जोड़ा है आपका
1: राधा गोरी राधा राधिका गोरी
2: राधा गोरी है और आप कृष्ण
3: हमें ये भी कहानी पता है कि कृष्णा ने राधा से शादी नहीं
1: पर ये पर ये कृष्णा फंस गया
0: लेकिन राधे से लेकिन नहीं इसे जितना प्रेम किया है उतना किसी से नहीं किया है कि राधे के बिना तो वो सांस ही नहीं लेते
2: जीबी जी मैं इसका आंसर दूंगी जो प्यार आपका और कृष्ण का है ना वो राधा राधा से के ये तो नहीं वो तो भगवान जी थे बट मेन तो प्यार की कीमत होती है और शादी तो एक हमारा यहाँ का बंधन है जो कलयुग का है मेनली तो एक दूसरे का प्रेम है वही राधा कृष्ण है तो आप लोगों का वही है
1: धन्यवाद धन्यवाद प्रिया जी धन्यवाद अमित थैंक यू सो मच ब्रदर

0: आपसे हमारा जो प्यार का रिश्ता है वो सभी लड़कियों से पहले शुरू हुआ था, आपसे बहुत पहले मिले थे यहाँ ऐसे जी भी जैसे क्या बात कर रहे हैं। पर अमित जी, हमेशा से आपको जब हम आए थे आपने हमें बहुत गाइड किया, एंड यू ऑलवेज बीन अ ब्रदर टू मी, सो थैंक यू। एंड आपने जब पूछा वी न्यू वी वर पैक टूडे बट वी मेक सम टाइम फॉर यू। सो गाइज, ये हमारे साथ आज आर के बी एम जो टीम थी, आप इनके जो बाकी मेम्बर्स है आप इनसे मिल सकते हैं कल शाम को, जब ये मेम्बर्स एक अलग ही तरह से अपने जो रूप निखार कर आ जाएंगे, क्योंकि नंद जी के जो ललना है कृष्णा को लाना है, और कृष्णा को लाने के लिए तो गोपियां की जरूरत पड़ेगी, तो सारे कल गोपियां बन जाएंगे और रेडियो कहजे भी वहां पे आएंगे। तो चलिए इसी के साथ एक गीत की फरमाइश आई है, सरस जी आप उधर फीजी से हमारे प्रोग्राम का मजा लेने लीजिए, आपके लिए मुनेश भाटिया जी कैसे हैं, सुदामा जी आप सभी के लिए, लिस्टिंग टू रेडियो कहजे लोकल ओनली ऑन
1: प्लेन्स मीडिया 96.9।

0: वेलकम टू रेडियो KJ और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज हमारा जो स्टूडियो है ये काफी भरा पूरा है और सभी के साथ मिलकर आज हम जो प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं, आज एक नए स्टूडियो से कर रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग एडजस्टिंग स्टिल लर्निंग अ लॉट, पर चलो ज्यादा समय ना लेते हुए वी हैव गॉट सम रियली ब्यूटीफुल पीपल इन आवर स्टूडियो दैट आपको देखना चाहते हैं। तो अगर आपको देखना है तो आपको जाकर फेसबुक लाइव में जुड़ना है। और दूसरी बार हम फेसबुक लाइव क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि टू सेपरेट ग्रुप। तो वेलकम टू रेडियो KJ's फेसबुक लाइव, और फेसबुक पे आज आपकी प्यारी जुबानी आज अपने अपना बोला नहीं पंच लाइन
1: नो टेक्स्ट सभी का क्या An easy online presence means reaching more customers and growing your biz. Ready to make the online leap? Visit Crazy Domains and build your website today.
0: अब भूल जाते हो उसमें Domains, कुछ और ऐड करने के लिए थैंक यू चली। जी हाँ बिल्कुल, आज जैसे हमने कहा कि हम एक नए स्टूडियो से काम कर रहे हैं तो कुछ जो एडजस्टमेंट करना, पर चलो विल गो स्ट्रेट इनटू इट। वी हैव गॉट एक ऐसे टीम जिनके साथ हम पिछले काफी सालों से काम कर रहे हैं और इस साल Never know. गॉड यू नो, अगर भगवान की कृष्णा की दयारी तो हम शायद पहुंच भी जाएंगे, पर एट द मोमेंट वी हैव गॉट द ब्यूटीफुल गरबा रोल्स टीम इन आवर हाउस। गरबा रोल्स टीम एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कहाँ से शुरू करें, सभी तरफ सुपरस्टार सभी तरफ बैठे हैं, तो हम सोच रहे हैं हमारे सामने जो सबसे पहले बैठे हैं आपसे शुरू करते हैं। वैसे तो हम आपसे आपके टीम से कई बार मिल चुके हैं, पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए एंड हाउ आर यू पार्ट ऑफ द टीम।
2: थैंक यू सो मच कृष्ण जी भी इनके साथ। ये जैसे कि कृष्ण ने कहा कि काफ़ी टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हमारा है,
3: 7 ईयर्स
2: एक्चुअली। तो मैं मेरी टीम को अपॉर्चुनिटी दूंगी कि भाई वो इस शो को आगे बढ़ाए। बट हम लोग का ये जो गरबा रोल्स है वो 10th October को है लिंकन इवेंट सेंटर में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर आए, क्योंकि कम्युनिटी और स्पॉन्सर्स के सपोर्ट के बगैर कोई भी इवेंट पॉसिबल नहीं होता है, और ये हम लोग पिछले काफ़ी सालों से कहते आ रहे हैं। तो ये इवेंट हमारा नहीं, आपका है, और आप इसकी जान हो तो प्लीज़ ज़रूर आइएगा।
0: निशा जी, इस साल आप गरबा नहीं टीच करोगे किसी को पहले से?
2: मैंने देखा है कि लास्ट 6 सालों में काफ़ी लोग ट्रेंड हो गया है, तो वो मुझे ट्रेन करने के लिए आ रहे हैं।
0: अब वो भी एक राइसेज में बहुत अच्छा ट्रेंड है, तो कोई थोड़ा सा सीख के फिर अपना सिखाना शुरू कर देते हैं ना।
2: Exactly.
0: अच्छी बात है ना, ये
2: मैं ज्वाइन कर लूंगी। अभी मुझे जरूरत है कि मुझे एडवांस लेवल का गरबा नहीं आता है, तो एडवांस लेवल की गरबा
0: अभी आप लोगों से सीख कर हमें भी लग रहा है कि अगले 2-3 साल में हम अपना ब्राइटन गरबा शुरू करने वाले हैं।
2: बिल्कुल गो फॉर इट।
0: पर यार जब हम बात करते हैं गरबा रोल्स का, आई स्टिल रिमेम्बर वेरी वेल जब हम पहली बार गरबा रोल्स के साथ आए थे एंड हाउ यू गाइस स्टार्टेड। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, यस यू हैड अ टीम, बट आई ओनली रिमेम्बर यू गाइस कि आप लोगों ने जब स्टार्ट किया था एंड हाउ इट इज़ ग्रोन ओवर द ईयर्स एंड लाइक ओवर द टाइम इट इज़ जस्ट यू नो लोग आ रहे हैं एंड द टीम हैज़ बीन सो स्ट्रॉन्ग नाउ दैट राइट नाउ। आज जब मैं आप लोगों का टीम देखता हूँ, बिकॉज इनिशियली इट वॉज जस्ट यू गाइस राइट, आप दोनों ने शुरू किया था, बट लुक एट योर टीम नाउ एंड आज आपकी टीम में एक ऐसे हैं जो शायद नहीं आएंगे स्टूडियोज में क्योंकि उनको कैमरा के पीछे रहना बहुत पसंद है। आई होप इज लिसनिंग टू माय वॉइस, जिन्होंने आई थिंक जब अगर क्राइस्टचर्च में जब हम अपनी बात करें कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां पर हम एज एमसीज आए, तो इट वाज थ्रू हिम बिकॉज ही एक्चुअली पुट अस आउट देयर। पर प्रीटी श्योर उनके जो लवली मिसेस हैं उनसे भी हम और सुनेंगे। चलिए आपके पास चलते हैं, तो और टेल अस समथिंग मोर अबाउट दिस ब्यूटीफुल इवेंट व्हिच इज व्हिच यू गाइस आर ब्रिंगिंग।
3: नमस्ते, मेरा नाम निशांत है, आप होपफुली आप सब लोग मुझे जानते होंगे। गरबा रोल्स 2019 में स्टार्ट हुआ था, इट्स बीन 7 ईयर्स एंड आर एम इज कि हम लोग गरबा को एज अ गरबा एज एंटरटेनमेंट करें, बट उसके साथ हमारा एक पर्पस भी है, कॉज भी है, एज अ कैंसर सोसाइटी सपोर्ट फंड रेजिंग। सो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था बैक इन 2019, वी आर जस्ट अ फ्यू ऑफ अस वॉलंटियर्स एट दैट टाइम, और स्टार्ट किया हम लोगों ने कि 50-60 लोग आ जाएंगे करके, और वॉज रियली सरप्राइज टू सी मोर देन 300 पीपल टर्न अप ऑन अ फर्स्ट इवेंट एंड वी वॉज नॉट एबल टू कोप अप, हम पता ही नहीं चल रहा था करना क्या है। हम लोग वी आर जस्ट वॉलंटियर्स की करे क्या, चलो क्या करते हैं, तब कितना पता नहीं था, तब मतलब क्राइस्टचर्च में इतना इंडियन कल्चर था बट पब्लिक नहीं था इतना, हाँ तो इतना मतलब एंड देन स्लोली